0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, हर मानव की चाह ईश्वर को देखने और उसे पाने की है। अपने हृदय में व्याप्त इस चाह की पूर्ति हेतु हम प्रभु के निवास, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए प्रार्थना करते, दान पुण्य करते और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। इस भांति निस्वार्थ और प्रेम की भावना से प्रेरित होकर किए गए हमारे कार्य निस्संदेह ही फलदायक होते हैं। निश्चित रूप में हम अपने कार्यों के माध्यम ईश्वर के अतुल्य आशीष और प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। यह हमारे हृदय के अंतःस्थल में प्रेम, शांति, एकता और भाईचारे के रूप में व्याप्त रहती है, जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हताश और निराश नहीं होने देती है, बल्कि जीवन की वैसी परिस्थितियों में भी हम नदी के किनारे रोपे गए वृक्ष की भांति सदैव हरे भरे, खुशहाल और शांति में बने रहते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 19वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में मानव का ईश्वर संग मिलन की चाह दर्शाई गई है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर गौर करें कि ईश्वर हमारे जीवन में किस रूप में आते हैं। क्या हम उनकी उपस्थिति को देखते और उन्हें पहचानने के योग्य होते हैं? क्या हम अपने सच्चे विश्वास में उनके पास उनसे मिलने हेतु उत्सुकता और तत्परता में आते हैं?
1: लोगों को भोजन खिलाने के तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं।
0: श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कारी कार्यों को देखने में मदद करे, जिससे हम उन्हें ईश पुत्र स्वरूप स्वीकार कर सकें, जो हमारे जीवन में आते और हमें अपनी कृपाओं से निरंतर पोषित करते हैं। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए याहवे और उनके द्वारा नियुक्त नबी एलियस के मध्य वार्ता की एक छोटी कड़ी को प्रस्तुत करता है, जहां ईश्वर नबी को गुफा से बाहर निकलकर पर्वत पर मिलने को बुलाते हैं। यह हमारे लिए ईश्वर की ओर से किए जाने वाले पहल की बात कहती है। श्रोताओं, हमारे जीवन में ईश्वर स्वयं चलकर हमारे पास हमसे मिलने आते हैं। यह हम नहीं बल्कि हमारे ईश्वर हैं जो हमसे मिलने हेतु तत्परता दिखलाते और हमारी बाट जोहते हैं कि हम उनका प्रत्युत्तर दें। पहला पाठ हमारे लिए इस बात पर गौर करने का आह्वान देता है कि ईश्वर किस रूप में हमारे बीच आते हैं। नबी एलियस ईश्वर को आंधी, भूकंप और आग में नहीं पाते हैं, बल्कि वे उन्हें शीतल मंद मंद वायु में अनुभव करते हैं। यह हमारे ईश्वर के स्वभाव को व्यक्त करता है, जो अपने स्वभाव में दीनहीन, नम्र और विनीत हैं। यीशु ख्रिस्त की मानवता में उनके जीवन और उनकी पूरी प्रेरिताई में हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। उनके कार्यों में हमें कोई भी आडंबर या नुमाइश देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इसके विपरीत वे सारी चीजों में अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी, विनम्र और दीनहीन बने रहते हैं। श्रोताओं, जिस तरह नम्रता मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के स्वभाव का अभिन्न अंग रहा, यदि हम अपने को उनके स्वभाव के अनुरूप ढालते, जो वास्तव में हमारे लिए कठिन जान पड़ता है, हमारा मिलन और हमारे दर्शन ईश्वर से होते हैं। अपनी नम्रता और दीनता के द्वारा हम ईश्वरीय महिमा के दर्शन करते हैं, जो सदैव हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करने की चाह रखते हैं। हमारी नम्रता हमें यीशु के हृदय के निकट लाती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र में हम प्रेरित संत पौलुस में नम्रता और दीनता के भाव को देखते हैं। वे अपनी नम्रता में अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण हेतु अपने को मसीह से भी वंचित करने की बात कहते हैं। प्रेरित पेत्रुस अपने भाइयों के मध्य मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में विश्वास की कमी के कारण अपने को आहत पाते हैं। अपने रक्त संबंधी भाइयों का अविश्वास उन्हें दुखी और उदासी से भर देता है, लेकिन उनके कल्याण हेतु वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिससे वे पुनः ख्रिस्त में विश्वास करते हुए उनका अनुसरण कर सकें। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को पानी में चलते हुए अपने शिष्यों के पास आते हुए सुना, जिन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते हैं और उन्हें प्रेत आत्मा समझते हैं। डर के मारे वे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यीशु उन्हें कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। इस पर पेत्रुस कहते हैं, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी में अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु कहते हैं, आ जाओ, और पेत्रुस पानी पर चलते हुए यीशु के पास आना शुरू करते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे घबरा जाते, उनका विश्वास डगमगा जाता और वे डूबने लगते हैं। श्रोताओं, यीशु के पीछे आने की चाह हम सबों की है, लेकिन दुनिया में हमारे जीवन की मुसीबतें, कठिनाइयां और चिंता हमारे लिए आंधी और तूफान बनकर उभरती हैं, जिनसे हम स्वतः ही घबरा और डर जाते हैं। अपने जीवन की छोटी बड़ी तकलीफें और हमारा टूटापन हमें चिंतित और विचलित कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर संकोच और संदेह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो यीशु की ओर बढ़ने वाले हमारे कदमों को अस्थिर कर देते और हमारी नैया डूबने के कागार पर आ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में यीशु हमारी ओर हाथ बढ़ाते और हमें भी फटकारते हैं, जैसे कि उन्होंने पेत्रुस को किया, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? इस भांति वे हमें कभी भी अपने जीवन की मझधार में डूबने नहीं देते हैं। श्रोताओं, आइए हम उस जल थल और नभ के मुक्तिदाता ईश्वर की सर्व शक्तिमता पर विश्वास करने की कृपा मांगें, जो सदैव हमारे संग चलते और हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हम उनकी ओर आने और उनके कार्यों को बिना झिझक अपने जीवन में पूरा कर सकें।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें की 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरित यात्रा का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। 4 दिनों की यह यात्रा बहुत व्यस्त होगी क्योंकि पोप वहां पेरिस, सेंट टेनिस, लूर्द और मेट्स शहरों का दौरा करेंगे। हालांकि पोप फ्रांसिस ने दिसंबर 2024 में अजाचो और कोर्सिया, सितंबर 2023 में मार्सिले और 2014 में स्ट्रासबर्ग की यात्रा की थी, लेकिन इनमें से कोई भी आधिकारिक राज की यात्रा नहीं थी। सितंबर 2008 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के बाद पोप लियो की यह पहली यात्रा होगी। शुक्रवार सुबह पोप स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे और पेरिस के ओरली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे सुबह 10 बजे उतरेंगे। स्वागत समारोह के बाद पोप देश के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन से एलिसी पैलेस में मिलेंगे। इसके बाद वे अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और कूटनीतिक निकाय को संबोधित करेंगे। पहले दिन दोपहर में वे यूनेस्को के मुख्यालय में भाषण देंगे। शाम के अंतिम कार्यक्रम में नोटरडेम महागिरजाघर में धम्म संघ की पुरुषों और महिलाओं के साथ संध्या वंदना होगा, जहां वे प्रवचन देंगे। पोप लियो फ्रांस में अपने पहले दिन का समापन सेंट डेनिस के स्टेट डी फ्रांस में करेंगे, जहां वे युवाओं के साथ प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। फ्रांस में उनका दूसरा दिन पेरिस महाधम प्रांत द्वारा चलाए जा रहे सोशल सपोर्ट एवं इंटीग्रेशन के लिए संत बकीता सेंटर के दौरे से शुरू होगा। इसकी स्थापना सितंबर 2021 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट फरवरी 2017 में पोप फ्रांसिस की हर प्रवासी का स्वागत, सुरक्षा बढ़ावा और एकीकरण करने की अपील के जवाब में हुआ था, जिससे उन्होंने न्याय, सभ्यता एवं एकजुटता का कर्तव्य कहा था। फिर पोप लियो पेरिस की कार्थिक यूनिवर्सिटी में प्रांतीय सिनोडल सभा के सदस्यों, नव दीक्षार्थियों एवं नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से मिलेंगे। लूर्द जाने से पहले पोप पेरिस में प्लाज दे ला कॉनकॉर्ड में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। लूर्द पहुंचने के बाद वे दिव्य दर्शन के ग्रोटो में प्रार्थना करेंगे, जो लूर्द की माता मरियम का तीर्थस्थल है। लूर्द में पहले दिन की सुबह पोप लियो प्लाज दे ला कॉनकॉर्ड की हमारी माता मरियम के तीर्थस्थल में संत बर्नादेत ऑडिटोरियम में फ्रांसीसी कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद तीर्थस्थल पर क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे एक्विल नोटरडेम के स्टाफ एवं बीमार लोगों से मिलेंगे। यह एक खास स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वागत केंद्र है, जहां दुनिया भर के तीर्थयात्री अपने तीर्थयात्रा के दौरान आते और रुकते हैं। उस मुलाकात के बाद पोप लूर्द के कार्मेलाइट मठ में एकांत मठवासी धर्म बहनों के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। रात में तीर्थस्थल पर पारंपरिक टॉर्च लाइट रोजरी शोभा यात्रा होगी। फ्रांस में अंतिम दिन पोप मेट्स जाएंगे, जहां वे एक अंतर धार्मिक सभा और रॉबर्ट शुमार कॉन्फ्रेंस सेंटर में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। संत स्टीफन महागिरजाघर में समापन क्रिस्त्याग के साथ पोप लियो का फ्रांस में प्रेरित यात्रा समाप्त होगी। आधिकारिक कार्यक्रम जारी करने के साथ ही वैटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि फ्रांस की आगामी प्रेरित यात्रा के दौरान पोप लियो 14वें कलीसिया में दुर्व्यवहार से पीड़ित कई लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है, इस मुलाकात की तैयारी में पीड़ित खुद शामिल हो रहे हैं, और कहा गया है कि तारीख, जगह या हिस्सा लेने वालों की संख्या के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं दी जा रही है, हालांकि बाद में और जानकारी दी जा सकती है। रांची के सहायक धर्मदक्ष माननीय आनंद डेविड खलखो का पावन धर्मदक्ष अभिषेक 8 अगस्त को रांची के लोयला मैदान में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। रांची के महाधर्मदक्ष माननीय विंसेंट आइंद ने मुख्य अनुष्ठाता और दिल्ली के महाधर्मदक्ष अनिल कुट्टो एवं रांची के सेवानिवृत्त महाधर्मदक्ष फेलिक्स टोप्पो ने सह अनुष्ठाता के रूप में अभिषेक समारोह को संपन्न किया। समारोह में वैटिकन के प्रेरितिक राजदूत के प्रतिनिधि के साथ साथ देश भर के कई माननीय महाधर्मदक्ष, धर्मदक्ष, सुपीरियर जनरल, प्रोविंशियल्स, पुरोहितगण, धर्म बहनों एवं विश्वासियों ने भाग लिया। पौत्र मिस्सा के दौरान पौत्र आत्मा के आह्वान के बाद पोप लियो 14वें के नियुक्ति व आदेश पत्र को पूरे विश्वासी समुदाय के समक्ष रखा गया।
वैटिकन के प्रेरित राजदूत के प्रतिनिधि मोनसिन्योर अंद्रिया फ्रांचा ने उसे लैटिन भाषा में और फादर थियोडोर टोप्पो ने हिंदी भाषा में पढ़कर सुनाया। विश्वासी समुदाय ने ताली बजाकर और ईश्वर को धन्यवाद कहकर उनके महान वरदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तत्पश्चात मुख्यानुष्ठाता महाधर्मदक्ष विंसेंट आयंद ने उपस्थित सभा के सामने कलीसिया में एक धर्मदक्ष का स्थान एवं उनकी जिम्मेदारी का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, जिस तरह पिता ने प्रभु येसु को दुनिया में भेजा, उसी तरह येसु ने प्रेरितों को भेजा। वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए ताकि ईश्वर के वचन का यथाशक्ति प्रचार कर सकें और हर जाति के लोगों को एक ही समुदाय में इकट्ठा कर सकें, उन्हें पौत्र जीवन का पथ प्रदर्शन करें। चूंकि उक्त काम संसार के अंत तक जारी रहना था, प्रेरितों ने अपने सहायक चुने और उनके माथे पर हाथ रखकर पौत्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे उन्होंने स्वयं पाया था, अर्थात पुरोहिताई की परिपूर्णता। उन्होंने बतलाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मदक्ष अटूट सिलसिले में अभिषिक्त होते आए हैं। इस तरह जो अधिकार शुरू में दिए गए थे, हमारे इस समय तक चले आए हैं। प्रभु येसु ख्रिस्त मनुष्यों के बीच स्थायी बने रहते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। धर्मदक्ष के द्वारा ख्रिस्त ही अपना वचन सुनाते हैं और समुदाय के सामने उनका गूढ़तम रहस्य खोलते हैं। येसु कहते हैं, मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। महाधर्मदर्श ने पोप फ्रांसिस की बात याद दिलाई कि चरवाहों में भेड़ की गंध होनी चाहिए और नवनियुक्त सहायक धर्मदर्श आनंद डेविड कल्को से कहा कि वे पिता और भाई के समान उन सभी को प्यार करें जिन्हें ईश्वर उन्हें सुपोर्ट करते हैं। उन्होंने उनके इस नए एवं विशेष कार्यभार के लिए ईश्वर से आशीष एवं कृपा की याचना की। धर्मदक्ष अभिषेक की पौत्र धर्म विधि शुरू करने से पहले उम्मीदवार की जांच हेतु कुछ सवाल किए गए, फिर संतों की स्तुति विनती हुई। उसके बाद सभी धर्मदक्षों ने बारी बारी से उम्मीदवार के माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना की। रांची के नवनियुक्त सहायक धर्मदक्ष का आदर्श वाक्य है, तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार।

0: श्रोताओ, हर मानव की चाह ईश्वर को देखने और उसे पाने की है। अपने हृदय में व्याप्त इस चाह की पूर्ति हेतु हम प्रभु के निवास, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए प्रार्थना करते, दान पुण्य करते और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। इस भांति निस्वार्थ और प्रेम की भावना से प्रेरित होकर किए गए हमारे कार्य निसंदेह ही फलदायक होते हैं। निश्चित रूप में हम अपने कार्यों के माध्यम ईश्वर के अतुल्य आशीष और प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। यह हमारे हृदय के अंतःस्थल में प्रेम, शांति, एकता और भाईचारे के रूप में व्याप्त रहती है, जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हताश और निराश नहीं होने देती है, बल्कि जीवन की वैसी परिस्थितियों में भी हम नदी के किनारे रोपे गए वृक्ष की भांति सदैव हरे भरे, खुशहाल और शांति में बने रहते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 19वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सभी पाठों में मानव का ईश्वर संग मिलन की चाह दर्शाई गई है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर गौर करें कि ईश्वर हमारे जीवन में किस रूप में आते हैं। क्या हम उनकी उपस्थिति को देखते और उन्हें पहचानने के योग्य होते हैं? क्या हम अपने सच्चे विश्वास में उनके पास उनसे मिलने हेतु उत्सुकता और तत्परता में आते हैं?
1: लोगों को भोजन खिलाने के तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कारी कार्यों को देखने में मदद करे, जिससे हम उन्हें ईश पुत्र स्वरूप स्वीकार कर सकें, जो हमारे जीवन में आते और हमें अपनी कृपाओं से निरंतर पोषित करते हैं। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए याहवे और उनके द्वारा नियुक्त नबी एलियस के मध्य वार्ता की एक छोटी कड़ी को प्रस्तुत करता है, जहां ईश्वर नबी को गुफा से बाहर निकलकर पर्वत पर मिलने को बुलाते हैं। यह हमारे लिए ईश्वर की ओर से किए जाने वाले पहल की बात कहती है। श्रोताओं, हमारे जीवन में ईश्वर स्वयं चलकर हमारे पास हमसे मिलने आते हैं। यह हम नहीं बल्कि हमारे ईश्वर हैं जो हमसे मिलने हेतु तत्परता दिखलाते और हमारी बाट जोहते हैं कि हम उनका प्रत्युत्तर दें। पहला पाठ हमारे लिए इस बात पर गौर करने का आह्वान देता है कि ईश्वर किस रूप में हमारे बीच आते हैं। नबी एलियस ईश्वर को आंधी, भूकंप और आग में नहीं पाते हैं, बल्कि वे उन्हें

शीतल मंद मंद वायु में अनुभव करते हैं। यह हमारे ईश्वर के स्वभाव को व्यक्त करता है, जो अपने स्वभाव में दीनहीन, नम्र और विनीत हैं। यीशु ख्रिस्त की मानवता में, उनके जीवन और उनकी पूरी प्रेरिताई में हमारे लिए उनकी नम्रता प्रकट होती है। उनके कार्यों में हमें कोई भी आडंबर या नुमाइश देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इसके विपरीत वे सारी चीज़ों में अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी, विनम्र और दीनहीन बने रहते हैं। श्रोताओं, जिस तरह नम्रता मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के स्वभाव का अभिन्न अंग रहा, यदि हम अपने को उनके स्वभाव के अनुरूप ढालते, जो वास्तव में हमारे लिए कठिन जान पड़ता है, हमारा मिलन और हमारे दर्शन ईश्वर से होते हैं। अपनी नम्रता और दीनता के द्वारा हम ईश्वरीय महिमा के दर्शन करते हैं, जो सदैव हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करने की चाह रखते हैं। हमारी नम्रता हमें यीशु के हृदय के निकट लाती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र में हम प्रेरित संत पौलुस में नम्रता और दीनता के भाव को देखते हैं। वे अपनी नम्रता में अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण हेतु अपने को मसीह से भी वंचित करने की बात कहते हैं। प्रेरित पेत्रुस अपने भाइयों के मध्य मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में विश्वास की कमी के कारण अपने को आहत पाते हैं। अपने रक्त संबंधी भाइयों का अविश्वास उन्हें दुखी और उदासी से भर देता है, लेकिन उनके कल्याण हेतु वे कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिससे वे पुनः ख्रिस्त में विश्वास करते हुए उनका अनुसरण कर सकें। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने यीशु को पानी में चलते हुए अपने शिष्यों के पास आते हुए सुना, जिन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते हैं और उन्हें प्रेत आत्मा समझते हैं। डर के मारे वे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यीशु उन्हें कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। इस पर पेत्रुस कहते हैं, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी में अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु कहते हैं, आ जाओ, और पेत्रुस पानी पर चलते हुए यीशु के पास आना शुरू करते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे घबरा जाते, उनका विश्वास डगमगा जाता और वे डूबने लगते हैं। श्रोताओं, यीशु के पीछे आने की चाह हम सबों की है, लेकिन दुनिया में हमारे जीवन की मुसीबतें, कठिनाइयां और चिंता हमारे लिए आंधी और तूफान बनकर उभरती हैं, जिनसे हम स्वतः ही घबरा और डर जाते हैं। अपने जीवन की छोटी बड़ी तकलीफें और हमारा टूटापन हमें चिंतित और विचलित कर देता है, जिसके कारण हमारे अंदर संकोच और संदेह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो यीशु की ओर बढ़ने वाले हमारे कदमों को अस्थिर कर देते और हमारी नैया डूबने के कागार पर आ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में यीशु हमारी ओर हाथ बढ़ाते और हमें भी फटकारते हैं, जैसे कि उन्होंने पेत्रुस को किया, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। इस भांति वे हमें कभी भी अपने जीवन की मझधार में डूबने नहीं देते हैं। श्रोताओं, आइए हम उस जल थल और नभ के मुक्तिदाता ईश्वर की सर्व शक्तिमता पर विश्वास करने की कृपा मांगें, जो सदैव हमारे संग चलते और हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हम उनकी ओर आने और उनके कार्यों को बिना झिझक अपने जीवन में पूरा कर सकें।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें की 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरित यात्रा का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। 4 दिनों की यह यात्रा बहुत व्यस्त होगी क्योंकि पोप वहां पेरिस, सेंट टेनिस, लूर्द और मेट्स शहरों का दौरा करेंगे। हालांकि पोप फ्रांसिस ने दिसंबर 2024 में अजाचो और कोर्सिया, सितंबर 2023 में मार्सिले और 2014 में स्ट्रासबर्ग की यात्रा की थी, लेकिन इनमें से कोई भी आधिकारिक राज की यात्रा नहीं थी। सितंबर 2008 में पोप बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के बाद पोप लियो की यह पहली यात्रा होगी। शुक्रवार सुबह पोप स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करेंगे और पेरिस के ओरली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे सुबह 10 बजे उतरेंगे। स्वागत समारोह के बाद पोप देश के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन से एलिसी पैलेस में मिलेंगे। इसके बाद वे अधिकारियों, सिविल सोसाइटी और कूटनीतिक निकाय को संबोधित करेंगे। पहले दिन दोपहर में वे यूनेस्को के मुख्यालय में भाषण देंगे। शाम के अंतिम कार्यक्रम में नोटरडेम महागिरजाघर में धम्म संघी पुरुषों और महिलाओं के साथ संध्या वंदना होगा, जहां वे प्रवचन देंगे। पोप लियो फ्रांस में अपने पहले दिन का समापन सेंट डेनिस के स्टेट दी फ्रांस में करेंगे, जहां वे युवाओं के साथ प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। फ्रांस में उनका दूसरा दिन पेरिस महाधम प्रांत द्वारा चलाए जा रहे सोशल सपोर्ट एवं इंटीग्रेशन के लिए संत बकीता सेंटर के दौरे से शुरू होगा। इसकी स्थापना सितंबर 2021 में हुए थे। यह प्रोजेक्ट फरवरी 2017 में पोप फ्रांसिस की हर प्रवासी का स्वागत, सुरक्षा बढ़ावा और एकीकरण करने की अपील के जवाब में हुआ था, जिससे उन्होंने न्याय, सभ्यता एवं एकजुटता का कर्तव्य कहा था। फिर पोप लियो पेरिस की कैथोलिक यूनिवर्सिटी में प्रांतीय सिनोडल सभा के सदस्यों, नव दीक्षार्थियों एवं नए बपतिस्मा प्राप्त लोगों से मिलेंगे। लूर जाने से पहले पोप पेरिस में प्लाज दे ला कॉनकॉर्ड में क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। लूर पहुंचने के बाद वे दिव्य दर्शन के ग्रोटो में प्रार्थना करेंगे, जो लूर की माता मरियम का तीर्थस्थल है। लूर में पहले दिन की सुबह पोप लियो प्लाज दे ला कॉनकॉर्ड की हमारी माता मरियम के तीर्थस्थल में संत बर्नार्डेट ऑडिटोरियम में फ्रांसीसी कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद तीर्थस्थल पर क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे एक्विल नोटरडेम के स्टाफ एवं बीमार लोगों से मिलेंगे। यह एक खास स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वागत केंद्र है, जहां दुनिया भर के तीर्थयात्री अपने तीर्थयात्रा के दौरान आते और रुकते हैं। उस मुलाकात के बाद पोप लूर्द के कार्मेलाइट मठ में एकांत मठवासी धर्म बहनों के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। रात में तीर्थस्थल पर पारंपरिक टॉर्च लाइट रोजरी शोभा यात्रा होगी। फ्रांस में अंतिम दिन पोप मेट्स जाएंगे, जहां वे एक अंतर धार्मिक सभा और रॉबर्ट शुमार कॉन्फ्रेंस सेंटर में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। संत स्टीफन महागिरजाघर में समापन क्रिस्त्याग के साथ पोप लियो का फ्रांस में प्रेरित यात्रा समाप्त होगी। आधिकारिक कार्यक्रम जारी करने के साथ ही वैटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि फ्रांस की आगामी प्रेरित यात्रा के दौरान पोप लियो 14वें कलीसिया में दुर्व्यवहार से पीड़ित कई लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है, इस मुलाकात की तैयारी में पीड़ित खुद शामिल हो रहे हैं, और कहा गया है कि तारीख, जगह या हिस्सा लेने वालों की संख्या के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं दी जा रही है, हालांकि बाद में और जानकारी दी जा सकती है। रांची के सहायक धर्मदक्ष माननीय आनंद डेविड खलखो का पावन धर्मदक्ष अभिषेक 8 अगस्त को रांची के लोयला मैदान में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। रांची के महाधर्मदक्ष माननीय विंसेंट आयंद ने मुख्य अनुष्ठाता और दिल्ली के महाधर्मदक्ष अनिल कुट्टो एवं रांची के सेवानिवृत्त महाधर्मदक्ष फेलिक्स टोप्पो ने सह अनुष्ठाता के रूप में अभिषेक समारोह को संपन्न किया। समारोह में वैटिकन के प्रेरितिक राजदूत के प्रतिनिधि के साथ साथ देश भर के कई माननीय महाधर्मदक्ष, धर्मदक्ष, सुपीरियर जनरल, प्रोविंशियल्स, पुरोहितगण, धर्म बहनों एवं विश्वासियों ने भाग लिया। पौत्र मिसा के दौरान पौत्र आत्मा के आह्वान के बाद पोप लियो 14वें के नियुक्ति व आदेश पत्र को पूरे विश्वासी समुदाय के समक्ष रखा गया।
वैटिकन के प्रेरित राजदूत के प्रतिनिधि मोनसिन्योर अंद्रिया फ्रांचा ने उसे लैटिन भाषा में और फादर थियोडोर टोप्पो ने हिंदी भाषा में पढ़कर सुनाया। विश्वासी समुदाय ने ताली बजाकर और ईश्वर को धन्यवाद कहकर उनके महान वरदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तत्पश्चात मुख्यानुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आयद ने उपस्थित सभा के सामने कलीसिया में एक धर्माध्यक्ष का स्थान एवं उनकी जिम्मेदारी का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, जिस तरह पिता ने प्रभु येसु को दुनिया में भेजा, उसी तरह येसु ने प्रेरितों को भेजा। वे पौत्र आत्मा से भर दिए गए ताकि ईश्वर के वचन का यथाशक्ति प्रचार कर सकें और हर जाति के लोगों को एक ही समुदाय में इकट्ठा कर सकें, उन्हें पौत्र जीवन का पथ प्रदर्शन करें। चूंकि उक्त काम संसार के अंत तक जारी रहना था, प्रेरितों ने अपने सहायक चुने और उनके माथे पर हाथ रखकर पौत्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे उन्होंने स्वयं पाया था, अर्थात पुरोहिताई की परिपूर्णता। उन्होंने बतलाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी धर्माध्यक्ष अटूट सिलसिले में अभिषिक्त होते आए हैं। इस तरह जो अधिकार शुरू में दिए गए थे, हमारे इस समय तक चले आए हैं। प्रभु येसु ख्रिस्त मनुष्यों के बीच स्थायी बने रहते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। धर्माध्यक्ष के द्वारा ख्रिस्त ही अपना वचन सुनाते हैं और समुदाय के सामने उनका गूढ़तम रहस्य खोलते हैं। येसु कहते हैं, मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। महाधर्माध्यक्ष ने पोप फ्रांसिस की बात याद दिलाई कि चरवाहों में भेड़ की गंध होनी चाहिए और नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष आनंद डेविड कल्को से कहा कि वे पिता और भाई के समान उन सभी को प्यार करें जिन्हें ईश्वर उन्हें सुपोर्ट करते हैं। उन्होंने उनके इस नए एवं विशेष कार्यभार के लिए ईश्वर से आशीष एवं कृपा की याचना की। धर्माध्यक्ष अभिषेक की पौत्र धर्म विधि शुरू करने से पहले उम्मीदवार की जांच हेतु कुछ सवाल किए गए, फिर संतों की स्तुति विनती हुई। उसके बाद सभी धर्माध्यक्षों ने बारी बारी से उम्मीदवार के माथे पर हाथ रखकर प्रार्थना की। रांची के नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष का आदर्श वाक्य है, तेरी इच्छा पूरी हो। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: हाँ मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
2: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ हुए भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल जीवन की अधिकांश गतिविधियां डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से चलती हैं। यह कथन संत पापा लियो चौदहवें की हैं और जिससे हम सभी सहमत हैं। डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से जीवन सहज और सुविधाजनक प्रतीत होता है। इंटरनेट की वजह से युवाओं के पास कैरियर, पढ़ाई और मनोरंजन के ढेरों विकल्प हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत सारे विकल्प होने के कारण युवा भ्रमित हो जाते हैं और अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते। इंटरनेट के कारण पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और संगीत का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह लोगों में अपनी संस्कृति एवं परंपरा खोने का खतरा है। सलाह दी जाती है कि हमें अपनी संस्कृति एवं परंपरा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही हमारी पहचान बनती है। यह हमें आपस में जोड़ती, जीने का ढंग, सही और गलत की पहचान तथा समाज में रहने के नियम सिखाती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल श्रद्धे फादर अजय मिंज येसु संघी बतला रहे हैं कि युवाओं को अपनी संस्कृति को बनाए रखना क्यों जरूरी है और जेन जी को क्या करना चाहिए। तो लीजिए प्रस्तुत है श्रद्धे फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ एक भेंट वार्ता, जिनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
1: मैं फादर अजय मिंज हूँ, येसु समाजी हूँ और बिलोंग करता हूँ रांची प्रोविंस से। और बेसिकली मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में हूँ और वहाँ एजुकेशन के साथ साथ युवाओं के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। मेरा घर मांडर पारिश पड़ता है और मैं 4 साल आईकफ जो कहते हैं उनका भी मैं स्टेट एडवाइज़र भी रहा, तो उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये भी महसूस करने को मिला। और अभी जो फिलहाल झारखंड में सरना और ईसाई आदिवासी के बीच जो तकरार होने लगा है, कभी कभी लगता है कि शायद युवा को अभी अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है और अपना जो जीवन है उन्होंने पाया है अपने पुरखों से, शायद उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ख्रिस्तीय युवा हैं और सरना युवा हैं, फिर उनमें जो तकरार होगी, शायद आपसी समझ में कमी पड़ सकती है और जिसके कारण आपस में फूट भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे सेंट्रल इंडिया का जो चर्च है, आदिवासी चर्च है, वहाँ एक फूट इन द सेंस सरना और ख्रिस्तीय के बीच, और उस जिसके कारण हमारे आदिवासी जीवन में भी प्रभाव होगा और जो हमारे चर्च को भी बहुत प्रभाव कर सकता है। और हमारा जो काम करने का जगह है, शायद हम उतने खुले तौर पर, उतने स्वतंत्रता के साथ शायद नहीं भी कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा आपस में जो एकता होनी चाहिए, आदिवासी एकता, वो हमेशा उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं चर्च को भी, मैं चाहता हूँ एज ए चर्च मेंबर चाहता हूँ कि हम उस दिशा में भी, उस एकता की दिशा में भी कुछ काम करें और युवा भी उसमें सहयोग दें।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा सुनने में आता है कि जो लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं वे लोग क्रिश्चियन हैं, वे लोग आदिवासी नहीं हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसे युवाओं को समझाएंगे?
1: ऑब्वियसली वो कहना तो एक एजेंडा के तहत ही कहा जाता है, जस्ट क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके बीच में ख्रिस्तीय और सरना के बीच में डिवाइड करें। लेकिन जस्ट कहना, और कहना इसलिए कहना कि क्योंकि वो सरना धर्म को नहीं मानते, क्योंकि आदिवासी केवल धर्म से नहीं डिफाइन होता, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति जो शायद हमें जन्म से ही मिलता है और जन्म से ही हम अपनी भाषा को सीखते हैं, नाच गान करते हैं, पूरे लाइफस्टाइल, जीवन दर्शन जो है उसको हम आगे लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैं जब जो ये चीज़ें कहते हैं उनका मैं खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने आप में विरोध भी करता हूँ कि वो सही नहीं है उनका कहना। और आदिवासी जन्म से होता है, कोई धर्म से नहीं, क्योंकि सरना धर्म या तो जैसे भी हम कहें या तो ईसाई धर्म शुरू से नहीं रहा है, उसके पहले ही हम आदिवासी थे और हम कंटिन्यू करते हैं आदिवासी होना। लेकिन अगर वही मुझको डर है, अगर हम संस्कृति को नकारते जाएंगे, चर्च में अगर होकर हम कटते जाएंगे, तो शायद लोग हमें ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे कि आप संस्कृति आपको पता नहीं, भाषा पता नहीं है, फिर आप जीवन दर्शन का पता नहीं है, तो फिर आप किस बात का आदिवासी हैं? तो हमें उस चर्च में होते हुए उन चीज़ों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई सारी चुनौतियाँ हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग कहने का मतलब जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं?
1: सबसे पहले बड़े जन को हम तो समझा तो नहीं सकते हैं, फिर भी अपना जो अपने तरीके से जो हम

0: तरह के बाहर अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें उसमें भी भाग लेने की आवश्यकता, ताकि वहाँ जो होती है उनके जो अंदर की बात है उसे भी हम समझ पाएँ, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो शायद फूट या तो एक दूसरे से हम अलगाव की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।
1: भी सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को रख रहे हैं, तो और उनको मतलब शांत तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, फिर भी कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जब भी किसी चीज़ के लिए हम खड़े होते हैं तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, और एक चीज़ का मैं यह कहूँगा युवाओं को कि जब आप सच्चाई को समझ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर कठिनाई होने के बावजूद आपको खड़ा होना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युवा जन ही समाज को एक नई दिशा देते हैं, बदलाव वही लोग लाते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को देखते हैं। हो सकता है कभी कभी उनमें ज़्यादा ही उग्रता आ सकती है, वहीं पर उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है तो उस सच्चाई को आगे तक लेने की आवश्यकता है। अपने आप को निश्चित तौर पर समझदार लोगों से भी जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार उनकी उग्रता या तो उनमें जो भावनात्मक उग्रता है वो शायद कभी कभी वो डिस्टर्ब कर सकता है, और उन्हें कभी कभी सही दिशा से सच्चाई से अलग भी ले सकता है और समाज में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों से बचकर आगे सच्चाई को लेकर सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई करते रहना है।
1: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका नशा। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, नशा सुनते ही आपके मन में क्या विचार आया? शायद शराब की बोतल, शराबी, शराब खाना वगैरह। शराब की नशा को छोड़ और भी नशा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे काम की नशा या वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस वजह से वे हमेशा तनाव में रहते हैं और कभी आराम नहीं कर पाते। उसी तरह प्यार का नशा। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, प्यार एक नशा है। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार प्यार में शराब जैसा नशा होता है। दरअसल प्यार में पड़े लोगों के मस्तिष्क में जिस तरह के बदलाव होते हैं वो दरअसल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि शराब पीने के बाद। अगर हमें नशा करना है तो समाज कल्याण के कार्यों का करना चाहिए। समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा जीवन में अपनाना चाहिए। महान लोगों ने दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर जीवन को सार्थक बनाया। आपको नशा करना है तो समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा करके तो देखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका नशा।
1: इतनी रात गए पिछले दरवाजे से कोई आ रहा है। अजी सुनते हो? देखो तो जरा कहीं चोर न घुस आए हो घर में। रात के 1:30 बज रहे हैं।
2: अरे चिंता मत करो, ये जगदीश भाई होंगे, हर छुट्टी पर ऐसे ही पीकर आते हैं।
1: लेकिन अब वो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है।
2: कुछ नहीं, खाना खाकर सो जाएंगे। घर में कोई भी नहीं है, खाना साथ ही लाए होंगे। तुम भी सो जाओ। जगदीश भाई के बारे में सभी को बस इतना ही मालूम है कि वे पास के अस्पताल में काम करते हैं, छुट्टी कभी नहीं करते। इसके पीछे भी कारण यह है कि वहीं पर दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। उनकी पत्नी और लड़का सालों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे।
1: बेचारे अब अकेले ही रहते हैं।
2: हाँ, तभी से छुट्टी के दिन इस तरह से दिखाई देते हैं।
1: लेकिन सुनिए तो, ये जगदीश भाई।
2: अरे अब तुम सो जाओ ना, मुझे इतना मालूम था, मैंने बता दिया। अब बाकी कल सुबह उठकर माँ से पूछ लेना।
3: हाँ ले आ, यहाँ सीढ़ियों पर ही दे दे।
1: माँ जी एक बात बताइए।
3: हाँ बेटा पूछ।
1: माँ जी ये अपने घर के पिछवा

0: अड़े में जो जगदीश भाई रहते हैं।
1: हाँ, क्या हुआ उन्हें? तुझसे कुछ बोले तो नहीं वो?
0: जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा।
1: अरे सुनंदा, जगदीश भाई के बारे में मोहल्ले में हवा अच्छी नहीं है।
0: लेकिन क्या आज तक किसी ने भी उन्हें शराब खरीदते या बोतल हाथ में लिए हुए देखा है?
1: अरे, नशे से लड़खड़ाते आदमी की पहचान तो सभी को होती है। तुम्हारी शादी के पहले सामने की पंडिताइन बोली भी थी कि अब जगदीश भाई को यहाँ से निकाल देना चाहिए। खैर, वे जो टिके हैं सो टिके हैं यहाँ पर।
0: सचमुच सुनकर अजीब सा लगता है। लाइए, मैं कप अंदर ले जाती हूँ, आप आराम से ऊपर जाइएगा, सीढ़ी ऊपर फिसलन है।
1: सुनंदा,
0: माजी,
1: जल्दी
0: अभी आई। माजी, माजी, अरे लगता है आपका पैर फिसल गया है। हे भगवान, कितना खून बह रहा है। माजी चलिए चलिए, मैं ही ले चलती हूँ आपको। बस बस, पास में ही अस्पताल।
1: हे भगवान,
0: बस
1: बड़ा दर्द कर रहा है सुनंदा।
0: बस माँ जी, अस्पताल आ ही गया बस।
2: अरे सुनंदा बेटी, तुम यहाँ? और ये माजी को क्या हो गया?
0: जी ये सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, काफी खून बह गया है।
2: तुम चिंता ना करो, मैं सब कर दूंगा। इसी अस्पताल में तो हूँ पिछले 10 सालों से। आइए माँ जी।
0: माँ जी, माँ जी आराम से, अब मैं यहीं पर हूँ।
2: तुम चिंता ना करो बेटी, मैं इनका ड्रेसिंग करवा कर अभी लाता हूँ।
0: जी, ओह, अब ये भी फोन को कितना बिजी रखते हैं। हेलो, हाँ सुनिए, देखिए माँ जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं। हाँ चोट काफी है। क्या कहा, नहीं आ सकते? ठीक है, अच्छा मैं देख लूंगी, शायद माँ जी को ड्रेसिंग करवा कर छोड़ देंगे। माँ जी, आज पूरे 2 हफ्ते हो गए आपको ड्रेसिंग करवाए हुए। डॉक्टर ने भी आज कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण घाव इतनी जल्दी भरा है।
1: अरे वो तो भला हो उस जगदीश भाई का, नहीं तो हमारे जैसे कितने ही मरीज थे वहां।
0: हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो अस्पताल में क्या काम करते हैं और छुट्टी के दिन ही क्यों शराब पीते हैं। शक्ल से तो वो आज ऐसे नहीं लगे।
1: अरे मुझे भी बहुत अचरज हुआ, और तो और उसने इलाज के पैसे भी नहीं लिए।
0: माँ जी, इस बार किराया देने आएंगे ना तो मत लीजिए।
1: नहीं, वो कहाँ करने देता है ऐसा। एक काम कर सुनंदा,
0: क्या माँ जी?
1: तूने आज खीर पूरी बनाई है ना,
0: हाँ
1: जगदीश भाई को बड़ी पसंद है। अभी वो घर में होंगे, आज अस्पताल में रसोईया छुट्टी पर है। बढ़िया थाली परोस कर ले जा उनके लिए।
0: जी, अब जी अभी जाती हूँ।
2: कौन है?
0: जी मैं सुनंदा, आपके लिए खाना लाई हूँ।
2: अरे सुनंदा बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की?
0: माँ जी ने कहा कि आपको खीर पूरी पसंद है इसलिए।
2: अच्छा, आओ बैठो।
0: जी आप खाइए ना।
2: हाँ, अरे वाह, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। तुमने बनाई है?
0: जी जगदीश भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था।
2: पूछो बेटी।
0: जगदीश भाई, आपको लेकर सब ये कहते हैं कि आप हर छुट्टी के दिन खूब शराब पीते हैं और आपको कोई दुख है। मुझे बताइए ना, आप ऐसा क्यों करते हैं? जी मैंने ये सवाल पूछकर कोई गलती तो नहीं की ना?
2: नहीं बेटा, मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि मैं अस्पताल में क्या काम करता हूँ?
0: जी नहीं तो।
2: ओह, तो सुनो, मैं एक जल्लाद हूँ बेटी। अस्पताल में होने वाली प्रत्येक मौत के बाद उस शरीर की चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम के लिए तैयार रखना मेरा काम है।
0: क्या?
2: हाँ बेटी, रोज देखता हूँ अभागी जवान लड़कियों को जो मार डाली जाती है, दुर्घटना में मरे पाए गए किसी माँ के नन्हे मुन्ने लाडले को, नई नवेली दुल्हन को विधवा कर इस जग से जाते उसके पति को, किसी बुढ़िया के अकेले सहारे को। अब क्या क्या गिनाऊँ तुम्हें? इस दुनिया के नए निराले सभी खेल इस मौत के आगे फेंकिए है बेटी। और उस मौत से जाने कितने तरीकों से मैं रोज मिलता हूँ, दिन भर के काम में सोचने को समय तो मिलता नहीं।
0: लेकिन जगदीश भाई, सब तो कहते हैं कि आप छुट्टी पर।
2: मुझे छुट्टी पर अपने पाप याद आते हैं जिस शरीर को माँ कितने जतन से अपने खून से पालती है, जन्म के बाद उसकी सालों देखभाल करती है, खिलाती है, पिलाती है, लाड़ करती है। हजारों माताओं का कलेजा चीरा है मैंने, नौकरी ही ऐसी है, क्या करूं?
0: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको लेकर क्या क्या नहीं सोचा।
2: जानता हूं बेटी, लेकिन छुट्टी के दिन मैं प्रायश्चित करता हूं, शहर से बाहर के उस उजाड़ मंदिर में जाकर वहां के बूढ़े पुजारी के साथ दिन भर रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मंदिर में झाड़ू देता हूं, आंगन की धुलाई करता हूं, जो भी काम बन पड़े बस दिन भर भूखे पेट करता रहता हूं, फिर वहां जो भी प्रसाद मिले उसी को लेकर घर आ जाता हूं। मंदिर शहर से दूर है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है, फिर थकान और दूसरे दिन के काम का सोचकर कदम लड़खड़ाने भी लगते हैं, मेरा यही नशा है बस।
0: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पवित्र नशे को कितना गलत समझा। काश कि ऐसा नशा इस दुनिया के सभी लोग कर सकते हो। सभी तो बस बातें करते हैं जगदीश भाई, लेकिन आपने सही मायने में अपना जीवन सार्थक किया है। आपको काम करने का, सेवा करने का नशा है, आप धन्य हैं।
3: नशा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, हेमेंदु तिवारी, अनुराग तागड़े और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ हुए भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल जीवन की अधिकांश गतिविधियां डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से चलती हैं। यह कथन संत पापा लियो चौदहवें की है और जिससे हम सभी सहमत हैं। डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से जीवन सहज और सुविधाजनक प्रतीत होता है। इंटरनेट की वजह से युवाओं के पास कैरियर, पढ़ाई और मनोरंजन के ढेरों विकल्प हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत सारे विकल्प होने के कारण युवा भ्रमित हो जाते हैं और अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते। इंटरनेट के कारण पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और संगीत का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह लोगों में अपनी संस्कृति एवं परंपरा खोने का खतरा है। सलाह दी जाती है कि हमें अपनी संस्कृति एवं परंपरा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही हमारी पहचान बनती है। यह हमें आपस में जोड़ती, जीने का ढंग, सही और गलत की पहचान तथा समाज में रहने के नियम सिखाती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी बतला रहे हैं कि युवाओं को अपनी संस्कृति को बनाए रखना क्यों जरूरी है और जेन जी को क्या करना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ एक भेंट वार्ता, जिनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
1: मैं फादर अजय मिंज हूँ, येसु समाजी हूँ और बिलोंग करता हूँ रांची प्रोविंस से। और बेसिकली मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में हूँ और वहाँ एजुकेशन के साथ साथ युवाओं के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। मेरा घर मांडर पारिश पड़ता है और मैं 4 साल आईकफ जो कहते हैं उनका भी मैं स्टेट एडवाइज़र भी रहा, तो उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये भी महसूस करने को मिला। और अभी जो फिलहाल झारखंड में सरना और ईसाई आदिवासी के बीच जो तकरार होने लगा है, कभी कभी लगता है कि शायद युवा को अभी अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है और अपना जो जीवन है उन्होंने पाया है अपने पुरखों से, शायद उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ख्रिस्तीय युवा हैं और सरना युवा हैं, फिर उनमें जो तकरार होगी, शायद आपसी समझ में कमी पड़ सकती है और जिसके कारण आपस में फूट भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे सेंट्रल इंडिया का जो चर्च है, आदिवासी चर्च है, वहाँ एक फूट इन द सेंस सरना और ख्रिस्तीय के बीच, और उस जिसके कारण हमारे आदिवासी जीवन में भी प्रभाव होगा और जो हमारे चर्च को भी बहुत प्रभाव कर सकता है। और हमारा जो काम करने का जगह है, शायद हम उतने खुले तौर पर, उतने स्वतंत्रता के साथ शायद नहीं भी कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा आपस में जो एकता होनी चाहिए, आदिवासी एकता, वो हमेशा उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं चर्च को भी, मैं चाहता हूँ एज ए चर्च मेंबर चाहता हूँ कि हम उस दिशा में भी, उस एकता की दिशा में भी कुछ काम करें और युवा भी उसमें सहयोग दें।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा सुनने में आता है कि जो लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं वे लोग क्रिश्चियन हैं, वे लोग आदिवासी नहीं हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसे युवाओं को समझाएंगे?
1: ऑब्वियसली वो कहना तो एक एजेंडा के तहत ही कहा जाता है, जस्ट क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके बीच में ख्रिस्तीय और सरना के बीच में डिवाइड करें। लेकिन जस्ट कहना, और कहना इसलिए कहना कि क्योंकि वो सरना धर्म को नहीं मानते, क्योंकि आदिवासी केवल धर्म धर्म से नहीं डिफाइन होता, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति जो शायद हमें जन्म से ही मिलता है और जन्म से ही हम अपनी भाषा को सीखते हैं, नाच गान करते हैं, पूरे लाइफस्टाइल, जीवन दर्शन जो है उसको हम आगे लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैं जो ये चीज़ें कहते हैं उनका मैं खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने आप में विरोध भी करता हूँ कि वो सही नहीं है उनका कहना। और आदिवासी जन्म से होता है, कोई धर्म से नहीं, क्योंकि सरना धर्म या तो जैसे भी हम कहें या तो ईसाई धर्म शुरू से नहीं रहा है, उसके पहले ही हम आदिवासी थे और हम कंटिन्यू करते हैं आदिवासी होना। लेकिन अगर वही मुझको डर है, अगर हम संस्कृति को नकारते जाएंगे, चर्च में अगर होकर हम कटते जाएंगे, तो शायद लोग हमें ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे कि आप संस्कृति आपको पता नहीं, भाषा पता नहीं है, फिर आप जीवन दर्शन का पता नहीं है, तो फिर आप किस बात का आदिवासी हैं? तो हमें उस चर्च में होते हुए उन चीज़ों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई सारी चुनौतियाँ हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग कहने का मतलब जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं?
1: सबसे पहले बड़े जन को हम तो समझा तो नहीं सकते हैं, फिर भी अपना जो अपने तरीके से जो हम इनिशिएटिव लेने की बात होती है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज में हूँ, तो अपने स्तर पर अगर मैं लोगों को, जैसे मैं हॉस्टल भी देखता हूँ, तो अगर मैं वहाँ बच्चों को अपने तरीके से एक करता हूँ, और ऐसा करने के बाद मैं एक जरूर मैसेज भी देता हूँ बाहर, कि वे भी बाहर जाके जब भी सुनते हैं कि आदिवासी और ख्रिस्ती अलग हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं मेरे जगह रह। तो एक एक तरीका है व्यक्तिगत तौर पर जो भी हम कर रहे हैं, वहाँ फूट की दिशा में काम ना करें, लेकिन हमेशा उसको एक करने के दिशा में काम करें, और साथ ही साथ जहाँ भी बन पड़े हमारे दायरे के बाहर अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें उसमें भी भाग लेने की आवश्यकता, ताकि वहाँ जो होती है उनके जो अंदर की बात है उसे भी हम समझ पाए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो शायद फूट या तो एक दूसरे से हम अलगाव की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।
0: भी सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को रख रहे हैं, तो और उनको मतलब शांत तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, फिर भी कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जब भी किसी चीज़ के लिए हम खड़े होते हैं तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, और एक चीज़ का मैं यह कहूँगा युवाओं को कि जब आप सच्चाई को समझ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर कठिनाई होने के बावजूद आपको खड़ा होना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युवा जन ही समाज को एक नई दिशा देते हैं
0: जी।
1: बदलाव वही लोग लाते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को देखते हैं, हो सकता है कभी कभी उनमें ज़्यादा ही उग्रता आ सकती है, वहीं पर उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है तो उस सच्चाई को आगे तक लेने की आवश्यकता है, अपने आप को निश्चित तौर पर समझदार लोगों से भी जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार उनकी उग्रता या तो उनमें जो भावनात्मक उग्रता है वो शायद कभी कभी वो डिस्टर्ब कर सकता है, और उन्हें कभी कभी सही दिशा से सच्चाई से अलग भी ले सकता है और समाज में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इसलिए उन चीज़ों से बचकर आगे सच्चाई को लेकर सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई करते रहना है।
0: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका नशा। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, नशा सुनते ही आपके मन में क्या विचार आया? शायद शराब की बोतल, शराबी, शराब खाना वगैरह। शराब की नशा को छोड़ और भी नशा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे काम की नशा या वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस वजह से वे हमेशा तनाव में रहते हैं और कभी आराम नहीं कर पाते। उसी तरह प्यार का नशा। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, प्यार एक नशा है। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार प्यार में शराब जैसा नशा होता है। दरअसल प्यार में पड़े लोगों के मस्तिष्क में जिस तरह के बदलाव होते हैं वो दरअसल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि शराब पीने के बाद। अगर हमें नशा करना है तो समाज कल्याण के कार्यों का करना चाहिए। समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा जीवन में अपनाना चाहिए। महान लोगों ने दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर जीवन को सार्थक बनाया। आपको नशा करना है तो समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा करके तो देखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका नशा।
1: इतनी रात गए, पिछले दरवाजे से कोई आ रहा है। अजी सुनते हो? देखो तो जरा, कहीं चोर न घुस आए हो घर में। रात के 1:30 बज रहे हैं।
2: अरे चिंता मत करो, ये जगदीश भाई होंगे, हर छुट्टी पर ऐसे ही पीकर आते हैं।
1: लेकिन अब वो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है।
2: कुछ नहीं, खाना खाकर सो जाएंगे। घर में कोई भी नहीं है, खाना साथ ही लाए होंगे। तुम भी सो जाओ। जगदीश भाई के बारे में सभी को बस इतना ही मालूम है कि वे पास के अस्पताल में काम करते हैं, छुट्टी कभी नहीं करते। इसके पीछे भी कारण यह है कि वहीं पर दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। उनकी पत्नी और लड़का सालों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे।
1: बेचारे अब अकेले ही रहते हैं।
2: हाँ, तभी से छुट्टी के दिन इस तरह से दिखाई देते हैं।
1: लेकिन सुनिए तो, ये जगदीश भाई।
2: अरे अब तुम सो जाओ ना, मुझे इतना मालूम था, मैंने बता दिया। अब बाकी कल सुबह उठकर माँ से पूछ लेना।
3: हाँ ले आ, यहाँ सीढ़ियों पर ही दे दे।
1: माँ जी एक बात बताइए।
3: हाँ बेटा पूछ।
1: माँ जी, ये अपने घर के पिछवाड़े में जो जगदीश भाई रहते हैं।
3: हाँ क्या हुआ उन्हें? तुझसे कुछ बोले तो नहीं वो?
1: जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा।
3: अरे सुनंदा, जगदीश भाई के बारे में मोहल्ले में हवा अच्छी नहीं है।
1: लेकिन क्या आज तक किसी ने भी उन्हें शराब खरीदते या बोतल हाथ में लिए हुए देखा है?
3: अरे नशे से लड़खड़ाते आदमी की पहचान तो सभी को होती है। तुम्हारी शादी के पहले सामने की पंडिताइन बोली भी थी कि अब जगदीश भाई को यहाँ से निकाल देना चाहिए। खैर वे जो टिके हैं सो टिके हैं यहाँ पर।
1: सचमुच सुनकर अजीब सा लगता है। लाइए मैं कप अंदर ले जाती हूँ, आप आराम से ऊपर जाइएगा, सीढ़ियों पर फिसलन है।
3: आह सुनंदा।
1: माजी
3: जल्दी आ।
1: अभी आई। माजी माजी, अरे लगता है आपका पैर फिसल गया है। हे भगवान कितना खून बह रहा है। माँ जी चलिए चलिए, मैं ही ले चलती हूँ आपको। बस बस पास में ही अस्पताल।
3: हे भगवान
1: बस,
3: बड़ा दर्द कर रहा है सुनंदा।
1: बस माँ जी अस्पताल आ ही गया बस।
4: अरे सुनंदा बेटी तुम यहाँ, और ये माँ जी को क्या हो गया?
1: जी ये सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, काफी खून बह गया है।
4: तुम चिंता ना करो, मैं सब कर दूंगा, इसी अस्पताल में तो हूँ पिछले 10 सालों से। आइए माँ जी।
1: माँ जी माँ जी आराम से, अब मैं यहीं पर हूँ।
4: तुम चिंता ना करो बेटी, मैं इनका ड्रेसिंग करवा कर अभी लाता हूँ।
1: जी ओह, अब ये भी फोन को कितना बिजी रखते हैं। हेलो हाँ सुनिए, देखिए माँ जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं। हाँ चोट काफी है। क्या कहा, नहीं आ सकते? ठीक है अच्छा मैं देख लूंगी, शायद माँ जी को ड्रेसिंग करवा कर छोड़ देंगे। 2 हफ्ते हो गए आपको ड्रेसिंग करवाए हुए। डॉक्टर ने भी आज कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण घाव इतनी जल्दी भरा है।
3: अरे वो तो भला हो उस जगदीश भाई का, नहीं तो हमारे जैसे कितने ही मरीज थे वहाँ।
1: हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो अस्पताल में क्या काम करते हैं और छुट्टी के दिन ही क्यों शराब पीते हैं। शक्ल से तो वो आज ऐसे नहीं लगे।
3: अरे मुझे भी बहुत अचरज हुआ, और तो और उसने इलाज के पैसे भी नहीं लिए।
1: माँ जी इस बार किराया देने आएंगे ना तो मत लीजिए।
3: नहीं नहीं, वो कहाँ करने देता है ऐसा। एक काम कर सुनंदा।
1: क्या माँ जी?
3: तूने आज खीर पूरी बनाई है ना?
1: हाँ।
3: जगदीश भाई को बड़ी पसंद है, अभी वो घर में होंगे। आज अस्पताल में रसोईया छुट्टी पर है, बढ़िया थाली परोस कर ले जा उनके लिए।
1: जी जी, अभी जाती हूँ।
4: कौन है?
1: जी मैं सुनंदा, आपके लिए खाना लाई हूँ।
4: अरे सुनंदा बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की?
1: माँ जी ने कहा कि आपको खीर पूरी पसंद है इसलिए।
4: अच्छा अच्छा, आओ बैठो।
1: जी आप खाइए ना।
4: हाँ हाँ, अरे वाह, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, तुमने बनाई है?
1: जी। जगदीश भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था।
4: पूछो बेटी।
1: जगदीश भाई, आपको लेकर सब ये कहते हैं कि आप हर छुट्टी के दिन खूब शराब पीते हैं और आपको कोई दुख है, मुझे बताइए ना आप ऐसा क्यों करते हैं? जी मैंने ये सवाल पूछकर कोई गलती तो नहीं की ना?
4: नहीं बेटा, मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि मैं अस्पताल में क्या काम करता हूँ?
1: जी नहीं तो।
4: ओह तो सुनो, मैं एक जल्लाद हूँ बेटी। अस्पताल में होने वाली प्रत्येक मौत के बाद उस शरीर की चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम के लिए तैयार रखना मेरा काम है।
1: क्या?
4: हाँ बेटी, रोज देखता हूँ अभागी जवान लड़कियों को जो मार डाली जाती है, दुर्घटना में मरे पाए गए किसी माँ के नन्हे मुन्ने लाडले को, नई नवेली दुल्हन को विधवा कर इस जग से जाते उसके पति को, किसी बुढ़िया के अकेले सहारे को। अब क्या क्या गिनाऊँ तुम्हें? इस दुनिया के नए निराले सभी खेल इस मौत के आगे फेंकिए है बेटी, और उस मौत से जाने कितने तरीकों से मैं रोज मिलता हूँ। दिन भर के काम में सोचने को समय तो मिलता नहीं।
1: लेकिन जगदीश भाई, सब तो कहते हैं कि आप छुट्टी पर।
4: मुझे छुट्टी पर? अपने पाप याद आते हैं, जिस शरीर को माँ कितने जतन से अपने खून से पालती है, जन्म के बाद उसकी सालों देखभाल करती है, खिलाती है, पिलाती है, लाड़ करती है। हजारों माताओं का कलेजा चीरा है मैंने, नौकरी ही ऐसी है, क्या करूं?
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको लेकर क्या क्या नहीं सोचा।
4: जानता हूं बेटी, लेकिन छुट्टी के दिन मैं प्रायश्चित करता हूं, शहर से बाहर के उस उजाड़ मंदिर में जाकर वहां के बूढ़े पुजारी के साथ दिन भर रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मंदिर में झाड़ू देता हूं, आंगन की धुलाई करता हूं, जो भी काम बन पड़े बस दिन भर भूखे पेट करता रहता हूं, फिर वहां जो भी प्रसाद मिले उसी को लेकर घर आ जाता हूं। मंदिर शहर से दूर है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है, फिर थकान और दूसरे दिन के काम का सोचकर कदम लड़खड़ाने भी लगते हैं। मेरा यही नशा है बस।
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पवित्र नशे को कितना गलत समझा। काश कि ऐसा नशा इस दुनिया के सभी लोग कर सकते हो। सभी तो बस बातें करते हैं जगदीश भाई, लेकिन आपने सही मायने में अपना जीवन सार्थक किया है। आपको काम करने का, सेवा करने का नशा है, आप धन्य हैं।
0: नशा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, हेमेंदु तिवारी, अनुराग तागड़े और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।